जुग जुग अटल सतगुरु शब्द सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन पवित्र चरणों में संगत रूप में जुड़ बैठे गुरु प्यारे समा मिले है। रोजाना की तरह शाम के दीवान विच आप जैसिया रब सरूप संगतां दे सन्मुख हुंदे आ आप जी के दर्शन की दात करते हैं आप जी नाल गुरमत के विचार की सांझ आरंभ करके सिख इतिहास का वह पन्ना जो आप कल शाम के दीवान विच पढ़ना किया उसके कुछ अगले हरफ आप जी नाल सांझे किए जाए। संगत विच बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियतां समायमान हुंदियां ने जिहड़ियां अपने अपने तौर ते पंथ की सेवा वास्ते बहुत कुछ करदियां ने सानू नहीं पता हुंदा। मीडिया का युग है अज सिखी का प्रचार है जिहड़ा गुरद्वारा साहब ते हो रहा है लेकिन साड़ी यंग जनरेशन गुरद्वारा साहब आने तो लगभग मुनकर है बागी है बहुत थोड़े बच्चे ने पंजाब विच तो इस तो भी ज़्यादा हालत है जिहड़ी वह बदतर है। यंग जनरेशन गुरद्वारा साहब आने तो मुनकर है नहीं आती फिर उन्होंने तक अपने धर्म की गल किवें पहुंचाई जाए यदा मतलब है कि सू मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा जिहड़ी गल नूं बच्चे पसंद करते हैं वह साधन सानू अपनाने पैणगे नहीं तो वह बच्चे जो कुछ वेखते ने उस पासे नूं रुचित हो जाएंगे। ऐसे जिहड़े मीडिया के तौर पर अखबारी पद्धर के तौर पर टैलीविजन के तौर पर बहुत वड्डिया सेवावां करते हैं गुरु के महान कीर्तनीए गुरबाणी का कीर्तन करके सिख संगत निहाल करते हैं संगत में स्वाभिमान ने तो मैं अपनी गल केंद्रित करता हुआ गल अगे तोरा आओ आप सब तो पहला संगती रूप में उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जप लीए ता कि मन एकाग्र हो जाए। आम असी यह गल कहने के जदों भी बाणी पढ़नी है मन एकाग्र करके पढ़िया करो। जिन्हें भी प्रचारक तुहानू मिलणगे एक ही गल कहिंदे ने भी जे बाणी पढ़नी है तो पहला मन एकाग्र करो फिर बाणी पढ़ो। हुण बाणी आपां सारी पढ़दे हां सवेरे गुटका साहब हथ विच हुंदा है जपजी साहब का पाठ आरंभ कर दिंदे हां बस चार पंज पौड़ियां पढ़दे हां मन किते दूर चला जांदा है उदों ही पता लग जांदा जदों श्लोक ते पहुंच जांदे हां। मनुख नूं अपने आप यह शक पैण लग जाती है भी पाठ मैं सारा कर लिया बेध्यानी विच कर जांदे क्योंकि मन बड़ा चंचल है पता नहीं किधरियां किधरियां किधरों किधर नूं अटारियां मार लैंदे हुण गुरद्वारा साहब बैठे ना आपां पर मन थोड़ी हाजिर है। मन किसी का पंजाब गया होएगा किसी का वैनकूवर चला गया होएगा लंबेरी का करां गल मैं कह रहा सी असी प्रचार किस गल से जोर दें भी मन एकाग्र करके बाणी पढ़िया करो लेकिन मन किवें एकाग्र हुंदा है इहने के सारिआं दा मन एकाग्र नहीं हुंदा विरले हन जिहड़ां दा मन एकाग्र हुंदा है।

देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़ै नित पवन सदन हरा सिमरियै नानक से देह आवन रागा समहला पहला छे कर छे गुरु छे उप

0: नानक चावे हो, नानक चावे हो। वाहेगुरु वाहे गुरु, वाहेगुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु वाहे गुरु, वाहेगुरु वाहे गुरु।
1: जिकारक जावे निहालो जावे, तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी मनु भावे।
2: जिकार बुलावे तत श्री गुरु गोविंद सिंह जी मनु भावे।
1: कटके जिकार निहालो जावे, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मनु भावे।
2: जिकार गावे निहालो जावे, तत श्री गुरु गोविंद सिंह जी मनु भावे।
1: बोले सो निहालो,
2: जो बोले सोने हाल हो जावे, तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी दे मन नु पावे।

सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पहार।

असंख बाहू असंख पूजा असंख तपताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख

जाहे ताके रूप न कथने जाहे नाउ हे मर है न ठाकी जाहे जिनके राम वसह मन माहे तिथे भगत वसह की लो करह आनंद सच्चा मन सोई सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव

प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निधान्ये नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपिसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्व प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अपेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्त अजोन आदि असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दशा विसा हुए फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव

दिस अदृश अकृस भगवती छंद त्वय प्रसाद कथति किया अच दिस किया भिज पिस किया गंज कर्म किया पंज परम किया भिज लोक किया दित सुख कि विधूत बरन कि विभूत करन कि राजंग प्रवाह है कि तरमंग तुझा है किया सुख बरन कि सर्वा अपरन कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपव अनूप है कि आद्य देव है कि आप अपिव है कि चित्रंग विहीन कि एक अधीन कि रुजी रजा कह रही मैं रेहा कह कि पाक बेब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौन कि सर्वत्र पौन कि सर्वत्र देश कि सर्वत्र पिस कि सर्वत्र राज्य कि सर्वत्र साज कि सर्वत्र दीन कि सर्वत्र लीन कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिस कि सर्वत्र पिस कि सर्वत्र काल कि सर्वत्र पाल कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज कि सर्वत्र राज्य कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण कि सर्वत्र प्राण कि सर्वत्र दिस कि सर्वत्र पिस कि सर्वत्र मान सदैव प्रधान कि सर्वत्र जाप्य कि सर्वत्र थाप्य कि सर्वत्र पहन कि सर्वत्र मन कि सर्वत्र इंद्र कि सर्वत्र चंद्र कि सर्वंग कलीम कि परमंग फहीम कि आकल अलाम कि साहिब कलाम कि हुसनल वजू है तमाम रुजू है हमीसुल सलाम सली खत्म दाम गनीमुल सिकस्त गरीबुल परस्त बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रुजूअल निधान हरीफुल अजीम रजायक यकीन अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है नृकुत स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुक्त प्रवाह है सुजुगत सुदा है सदैवंग स्वरूप है अपेदि अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिबाद्य अगंजे अगाधे सुबंग सुबंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अशूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है नृकत प्रवाह है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है नृकत सदा है विपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है नचिंत है सुनंत है अलेख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमाथंग परमाते सदा सर्वसाथी अगाद स्वरूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न

सुंवर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी तृत हैं, अमृतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजपा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विशुंभर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवपंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जपजापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजलानामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद स्तरंग प्रणासी।

फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी।

जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जबद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जीते बदन।

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किलविख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन कोशय करता श्री अस तुजब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस ना पावई सुने

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नूं सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकदे हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आउंदी है उत्थे सुन सकदे हो। किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं ले जाना जीओ सहज सवा जिन्ना गुरमुखां दा शब्दां विच ध्यान जांदा शब्दां विच ध्यान रखना जीओ नेत्र बंद रखने जीओ।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही किता पावना हुकम कीवन भाव दे रहे पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसै खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना कर अवगुण पछोतावना।

पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तै धारिया देखे किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों।

जित द्वार उभरत तलहु उभार सुकहु टल गुर सेविय अहनस सहज सुपाए दर्शन परस गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

कह नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जानी। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलोक।

0: खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी अनुशब्द कीर्तन सरवण करवा रहे सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई करमजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वाले का रागी जत्था संगता वालों भाई साहब जी के जत्थे का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण बेनती करदे आ बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई बिक्रमजीत सिंह जी गुरदासपुर वालों के रागी जत्थे नूं कि वह आप जी अनुशब्द कीर्तन सरवण करवाउण जी। आप जी शब्द कीर्तन सरवण करो जी ते गुरु साहब जी दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु गुर पूरा आराध, सब किल विख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया।

सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते तुमरे गत मित नानक दास सदा कुर्बानी एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस तिठ है सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया घर नौ निधि आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां जी की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चाहां साहिबजादिया चाली मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन्न डिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आर्यां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छा रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ ही जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा पवाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरतामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेओटियां दी ओट अकाल पुरख वाहे गुरु जी धन धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज आप जी ने रहमत कीती आप जी की पावन हजूरी अंदर सरदार अजीत पाल सिंह सपुत्र सरदार कृपाल सिंह सरदारनी सरनजीत कौर तालीवाल दा शुभ आनंद कारज बीबी अमीन कौर सपुत्री सरदार कुलदीप सिंह सरदारनी सिमरनजीत कौर सिमरनदीप कौर संधु दे नाल संपन्न होया दयालु पातशाह जी सुभागी जोड़ी तो आप जी की पावन हजूरी अंदर विचरदिया आप जी की शान विच होइया बेअंत बेअदबियां भुलां गलतियां वास्ते माफी बख्शिश करनी दयालु पातशाह जी रहमत करनी बच्चियां दे सिर ते बख्शिश भरिया हथ रखना जीवन पर्यंत आप अंग संग सहाई होके सहायता करनी मार्गदर्शन करना अपने चरणा नाल जुड़े रहने की चेतना बख्शिश करनी दरों करों जीवन विच सफलतावां चोली पा के किरतार्थ करना जी दयालु पातशाह जी सेवक परिवारां विच आपसी प्रेम इतफाक की दात बख्शिश करनी सेवकां दियां शुभ मनोकामनावां पूर्ण करनिया नेक कमाइयां च बरकतां पा के निहाल करना जी घर परिवारां विच शरीरिक मानसिक तंदरुस्तियां की दात बख्शिश करनी दीना बंधु जी
पढ़ी सुनी बाणी हिरदयां च वसाउणी ताराई संगत दी हाजरी भेटा प्रवान करनी दरों करों नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करनियां कृपालू पातशाह जी आप जी की पावन हजूरी अंदर सेवा निभाउंदियां दासरियां पासों आप जी की शान विच होईयां बेअंत भुल्लां गलतियां वास्ते माफी बख्शिश करनी आप रहमत प्रयात सिर ते रख के दर दी सेवा प्रेम दे योग बना लेना जी कृपालू पातशाह जीओ सेवक परिवारां वल्लों आप जी के पावन स्वरूप नूं पोशाक के भेट कीते गए हन आप जी अंगीकार करने सेवकां नूं दरों करों सेवा ते प्रेम दी दात झोली पा के निहाल करना जी आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है जी प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो पावन असीस रूप विच हुक्मनामे दी दात बख्शिश करके निहाल करो जी सरबत दे कारज रास करने सरबत दा भला करना सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेत आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आग्या पई अकाल की सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जे मान्यो प्रगट जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द राज करेगा खालसा खुआर हुए सब मिलेंगे बचश खुआर हुए सब मिलेंगे बचश शरण जो

सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे।